0: ये मा छपची मुझो मियो
1: हुंथा अमलाल ने भी मेगे निबुथिंग को मितु अमजिला के तमे ती फेन थो मा सुखी अमला मेंगाल मेंजु ना दु मिंतु ना कंजे छौजे ना कंजे छौजे

0: लाफ्टर तुम जो ओस रोई था, लेगा ची मेरे।
1: ची भी, इन्हें किस केम तू?
0: हाँ, जान लेगा ची मिजु जान लाज़ टिक योजी, क्यों बिचारा यो मरता?
1: मरे, आर सोसी चवास तम्चू। ओ, आर सोसी चवास निम्दो कौनसे सोसी यू?
0: ओजी, जो।
1: तादन आर सो मासा तक निम्दो।
0: आंगू मेरा। आ। Maza yun na hukun su na yagu yoshi. Maza maya na liaga si sena kagashi. Senpa gibu yume la samu shita dangu maashi. Nima jik rangi bai zunxia ni zhumzhe to senpa gibu chungbu yin na ane rangi likru chungbu shi.
1: Rang mi shinda wawo da kyo ni zhigami du?
0: Ya, rang shu da, manda kardo.
1: Baba rang jugo le na yume yungu li samu duwe.
2: Did